0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के लिए खुदकार शहरियत के हक को महदूद करने की एक और कोशिश की है। उन्होंने जुमेरात को दो सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए। मौजूदा कवानीन के तहत मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे अपने वालिदैन की कौमियतों से कतई नज़र अमरीकी शहरी बन जाते हैं। एक हुक्मनामे में बर्थ टूरिज्म के खिलाफ सख्त इकदाम करने की ज़रूरत का हवाला दिया गया है। इस तरह की सियाहत में हामिला खवातीन जचगी के लिए आर्जी वीज़ों पर अमरीका जाती हैं ताकि उनके बच्चे अमरीकी शहरियत हासिल कर सकें। दूसरा हुक्मनामा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के अरकान के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत देने से इनकार के बारे में है। अपनी मौजूदा मुद्दत के पहले दिन गुज़िश्ता साल जनवरी में भी ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसका मकसद अमरीका में गैर कानूनी या आर्जी तौर पर रहने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के लिए पैदाइशी हक शहरियत को ख़त्म करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में उस हुक्म को गैर आइनी करार दे दिया था। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना का कहना है कि वो इस साल के आखिर में भारत में अपनी जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटने का इरादा रखती हैं। इक्तदार से हटाए जाने को दो साल मुकम्मल होने के मौके पर हसीना ने बुध को नई दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से टेलीफोन पर खिताब किया। उन्होंने कहा, जैसा भी मुकद्दर मेरा मुंतज़र हो मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। उनका मजीद कहना था, मैं जानती हूं कि वो मुझे पाबंदे सलासल कर सकते हैं या मुझे कत्ल किया जा सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे वापस जाना है। 2024 में तालिब इल्मों की क़यादत में होने वाले मुजाहरों के सबब उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया था और उन्हें अपना मनसब छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना जिलावतनी इख्तियार करते हुए भारत चली गई थी और अब तक वहीं मुकीम हैं। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक उन्हें शोरिश के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देने पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में 2025 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। क्रैकडाउन में 1400 अफराद हलाक हो गए थे। NHK को मालूम हुआ है कि एक रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी के सर्वे के मुताबिक जापान में कैरियर तब्दील करने वाले तकरीबन निसफ नौजवान जाय रोज़गार पर मसनूई जहानत के इस्तेमाल में वसत के तनाजुर में मेहनत मुशक्कत वाली मुलाजमतों में दिलचस्पी रखते हैं। गाकुजो नामी कंपनी ने जुलाई से अगस्त तक 20 के पेटे के ऐसे कारकुनों का एक ऑनलाइन सर्वे मुनक़िद किया जो मुलाजमतें तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। कंपनी को तकरीबन 200 जवाबात मौसूल हुए। डिस्ट्रीब्यूशन या तामीराती मकामात पर मुशक्कती काम पर मुंतकिल होने के उनके इरादे के बारे में पूछे जाने पर 40.5% जवाब दहिंदगान का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी तब्दीली पर गौर नहीं किया। 48% ने कहा कि उन्होंने गौर किया है या दरख्वास्त दी है या वो किसी हद तक दिलचस्पी रखते हैं। सर्वे में ये सवाल किया गया था कि क्या उनकी दानिश में तख्लीकी मसनूई जहानत के वसी पैमाने पर राइज होने के सबब क्लैरिकल और नॉन कैरियर मुलाजमतें कम हो जाएंगी। 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। ये नतायज बज़ाहिर मुलाजमत के नौजवान मुतलाशियों में इस बहरान के एहसास की अक्कासी करते हैं कि दफ्तरी और क्लैरिकल काम काज वगैरह के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा। गाकुजो का कहना है कि बहुत से नौजवान कारकुन मसनूई जहानत के इस दौर में कैरियर बनाने के बारे में इतने परेशान हैं कि वो ऐसे रोज़गार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं जिसकी जगह AI नहीं ले सकती। सर्वे फर्म ने मजीद कहा कि ये रुझान बुनियादी तौर पर नौजवानों में मजीद फैलने का इम्कान है। बावर किया जाता है कि मेहनत मुशक्क़त वाले रोज़गार में बढ़ती हुई दिलचस्पी की एक और वजह इन शोबों में उजरतों का बढ़ना है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के जनूब मगरबी जज़ायर को एक बड़े समंदरी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया है। جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں 36,000 سے زائد گھرانے اس علاقے میں زبردست زلزلے کے 10 دن بعد بھی پانی سے محروم ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: ね。
1: 本当ですね。
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मुझे ये बिल्ली पसंद है. अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद बता सकते हैं.
3: वाताशी के मायने है मैं, और उसके बाद का वा मौजू को जाहिर करता है. नेको बिल्ली को कहते हैं, कोनो नेको का मतलब हुआ ये बिल्ली. जुमले के आखिरी हिस्से स्की दिस में स्की ना इसमें सिफत है जिसके मायने है पसंद. अब आज का नुक्ता, अपनी पसंद का इजहार करने के लिए पसंदीदा चीज को जाहिर करने वाले इस्म के बाद गा और उसके बाद स्की देस लगाएं. मसलन आपको बिल्ली पसंद है तो बिल्ली की जापानी है नेको, चुनाचे ये जुमला होगा नेको गा स्की देस.
2: मुझे बिल्ली पसंद है के लिए क्या नेको स्की देस भी कहा जा सकता है?
3: जी नहीं, स्की देस में स्की यानी पसंद फेल नहीं बल्कि ना इसमें सिफत है. मकसद ये मफूल को जाहिर करने के लिए इसमें सिफत के साथ हर्फ जार ओ नहीं बल्कि गा इस्तेमाल होता है.
2: अच्छा, मैं समझ गई. मकालमे में आयाका का जुमला वताशीवा खुनो को गा स्की भी इसी तरह का जुमला है.
3: जी बिल्कुल ठीक, ये मकालमा दोस्तों के दरमियान है इसलिए आयाका ने आखिरी देस को हजफ कर दिया है और स्की देस की बजाय सिर्फ स्की कहा है.
2: अच्छा, वताशीवा भी तो अक्सर हजफ कर दिया जाता है लेकिन आज के मकालमे में ताम और आयाका दोनों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसा क्यों है?
3: दोनों ने अपनी अपनी पसंद का इजहार किया है जो दूसरों से और एक दूसरे से मुख्तलिफ है. मसलन ताम ने अपने जुमले वाताशीवा कोनो नेको गा स्की देस में वाजे तौर पर वाताशीवा का इस्तेमाल किया है. ये एक तरह से अपनी बात पर जोर देने के लिए है, यानी दूसरों की पसंद तो अलग हो सकती है मगर मुझे ये बिल्ली पसंद है.
2: तो सामीन ये जुमला तीन मुख्तलिफ अंदाज में सुनिए और दोहराइए.
4: स्की देस कोनो नेको गा स्की देस.
2: जी सामेन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा.
3: अब अपनी पसंद के इजहार से मुतालिक एक मकालमा सुनिए.
5: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
6: सुशी गा स्की देस.
3: और अब मकालमे की तशरीह.
5: ताबेमोनो वा नानी गा स्की देस का?
2: खाने में क्या पसंद है?
3: ताबेमोनो खाने की किसी चीज को कहते हैं और चूंकि ये गुफ्तगू का बुनियादी मौजू है इसलिए इसके साथ हर्फ जार वा लगाया गया है. नानी तो आप पहले भी सीख चुके हैं, इसके मायने हैं क्या. नानी गा स्की देस का के मायने हुए क्या पसंद है?
6: सुशी गा स्की देस.
2: सुशी पसंद है.
3: सुशी अब दुनिया भर में मशहूर और मकबूल जापानी खाना है.
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए.
4: तबेमोनो वा नानी गा स्की देस का? सुशी गा स्की देस. सुशी गा स्की देस.
2: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा.
3: अब कुछ और पसंदीदा चीजें बताने की मशक करते हैं. अगर आपको जे पॉप पसंद है तो ये बात कैसे कहेंगे? जे पॉप का जापानी तलफ्फुज है
4: जे पॉप. जे पॉप.
3: तो सामीन कोशिश करें.
6: जे पॉप गा स्की देस. जे पॉप गा स्की देस.
3: और अगर आपको कॉमिक्स या कार्टून पसंद है तो इसका इजहार कैसे करेंगे? कॉमिक्स की जापानी है
4: मांगा. मांगा.
5: मांगा गा स्की देस. मांगा गा स्की देस.
3: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर. आज का जुमला मकाल में से ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें.
1: होंतो देस ने.
3: होंतो दरअसल होंतो यानी वाकई की मुख्तसर शक्ल है. होंतो देस ने यानी वाकई ऐसा ही है, किसी की बात से इत्तेफाक करने के लिए इस्तेमाल होता है. देस ने का आखिरी ने भी इत्तेफाक करने के लिए ही इस्तेमाल होता है.
2: तो अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए.
7: होंतो देस ने.
8: होंतो देस ने.
7: होंतो देस ने.
2: सामीन अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए.
4: होंतो देस ने.
3: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं. उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें आयाका और ताम अपनी अपनी पसंद का इजहार करती हैं.
1: わいい。みんなご飯を食べています。
0: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
1: 私はこの猫が好きです。
9: 猫カフェってリラックスできるよね。
1: 本当ですね。
10: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे।
3: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں۔ مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں۔
2: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔
3: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم میڈ کیفے کی ہے۔ ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشو جن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔
2: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔
3: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں۔
2: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے۔